ज्ञानी नचे बाजे वावे रुक्र श्रृंगार ऊंचे कुके बादां गावे जोधां का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार जति सदा वह जोतना।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैभं गुर प्रसाद चक्र चेहन अर बर्ण जात अर पात नैन जे रूप रंग अर रेख पे कौ कहना सकत के है।

कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत तब सर्वना

नाम वर्णत सुमत मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल को देदान तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिर।

सुत दारा स्यों प्रीत लगाय, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु राम दास राखो।

राखो शरणाई सुको टल गुर सेविय ऐनस सहज सुवाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी।

तू बेअंत को विरला जान है, तू बेअंत है पर कोई विरला ही जानता है। इस गल नू समझदा कोई विरला ही है ना, भी तू बेअंत। जे हर कोई समझ ले फिर हर एक दी अरदास किहदे अगे होवे। जिन्ने समझिया उन्ने ही उहदे अगे अरदास कीती, नहीं तो दुनियावी तौर दे उत्ते संसारिक तौर दे उत्ते बने हुए वखरे वखरे दर ते वखरे वखरे घर ये दर्शाउंदे ने भी लोकां दीआं बेनतीआं बड़े अगे ने, संसार दीआं बेनतीआं बहुत अगे ने। एक दर नहीं दूजा सही, दूजा नहीं तीजा सही, किन्ने दर ने। ते जेड़े ओदे दर ते खड़ो के अरदास करन वाले ओ टावे ने,

तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम अर का सदा जाचों,

मन मांजै सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु वाहिगुरु।

कोई ना को हो आ ना को होए जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात जैना जैना करके कीती रात कसम विसार ही ते कम जात नानक नाम ही बाईस नात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बड़ भाग बड़ेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सिंह मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितुमहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुरप्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत मैता कोय ना किसकी तरया सिर से रिजक समाही ठाकुर काहे मन पौ करया ऊडे ऊड़ा वैसा कौंसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मने मही सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओ ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहें सब त्या वहें तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दयाव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट यंत्र सर्ब निरंतर जी हरे को पुरख समाणा एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बे अंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वहें हर त्या वहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जना हर त्याया जी तिन तूठी जमकी फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका पो सब गवासी।

जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन मल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहें हर पूजा जी तप तापहें जपहें भयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछुड़िया संयोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरवरे पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकजो महो पग नहीं चले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जेना तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्रापत मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंग जाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जा रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जन आहर राया कोहु नानक हमली चिकरमा शरण परे की रखो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध
न जन्ने आर राया कोहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई अमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो आब हाथ दे मोहे बचाबहो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबैरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुएं छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखा मारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आवहाद दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा राख ले ओ मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतरदस कंता काल पाए ब्रह्मा बापतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार हैं ताहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंद जक्षण उपजायो आदि अंत एक कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सिवगुण सुख दियो शत्रण को पल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पढ़ पढ़ की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आ करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जानत बेद भेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपा हण अनुमानत महामूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत नह पिब आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा इक्कै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेताज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहों फूल राजा हवै बैठा कहों समड़ भयो शंकर अकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो
सिखियो बार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे आस तो जे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताके काल निकट नह ऐह रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तान जाहे न हरिओ ताके ताप तन कमाए हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसते ताहे उबारा।

सर्वठोर्मोहो सहायी दुष्टदोखते लेहो बचाई अड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो ओवारी सर्वठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख दे लेहो बचाई सवैया पाए गहे जावते तुमरे तबते को आंख तर नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्या दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तोहारो द्वार मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तोहारो द्वार मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन मजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियाँ एह वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जितकर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ
तित कार अनहद बाजी अनंद सुनहो वडवागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भरे भूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भरे भूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहें जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया बेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले आ

तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरे अह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की।

दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदा बिताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा

तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान सच्चा धाउन तीरथ, दस पूर्व सदा दशहरा, हो नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरनी धरा, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चन्नन, नित साच तीरथ मजना, सच न लागे मैल क्या मल तोइए, गुण आर परोए किस करोइए, विचार मारे तरे तारे, उल्ट जोहन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे पावे, आनंद आनंदन हरक साचा, दुख किल विक पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने,

शबद सुहावणाओ सलहे सच्चे मन सतगुर पुन दान दया मते पेर संग पावे सहज नावे बेणी तसंगम सत्य सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संगमिता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कै सब कोई के बड अखिया हों मूरख नीच अजान समझा सखिया सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मनिया मेरा कुछ करे आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट न भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई आखण तोट ना भगत भंडारी

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दी हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकागर करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणां विच जुड़न दा यतन करिए। सबना दियां हाजरियां गुरु पातशाह जी दे पावन चरणां विच लग जाण। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता सरबंस दानी अमृत के दाते बादशाह दरवेश शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हो। आनंदपुर साहिब दी पावन धरती ते जिथे गुरु महाराज जी आईयां हुईयां सिख संगतां नूं निवाजदे हन जिथे सतगुरु महाराज जी आईयां हुईयां ते कृपा बख्शिश रहमत वरतौंदे हन बाई धार दे राजियां दे कारण राजा भीम चंद कहलूरी राजे दे कारण अज उस धरती दे उते जंग हो रही है। ये हंकार दे भरे हुए राजियां ने अपनी सेना नूं एकत्र करके आनंदपुर साहिब आ सतगुरु महाराज जी गुरु के खालसे दे उते हमला किया और जिदा जवाब गुरु पातशाह ते गुरु का खालसा बखूबी इन्हां नूं दे रहा है। इस जंग दे विच बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे वह भी इस जंग दे विच मौजूद ने बड़ी दलेरी नाल बहादरी दे नाल इन्हां वैरियां दे नाल जूझदियां होया इन्हां दा सामना जिहड़ा वह कर रहे ने। इस जंग दे विच बाई धार दे जिहड़े राजे इन्हां दे सिपाही जिन्हां दे पैर थिड़कदे होए नज़र आउंदे ने जदों गुरु का खालसा वीर रस विच आ के इन्हां उत्ते हल्ला बोलदा है दोवें पासियों एक दूजे उत्ते वार किते जा रहे हैं किते गोलियां चलदियां ने किते तलवारां खड़कदियां हैं और किते कमान दे विचों तीर जड़े ने वो चल रहे ने और किते नेजियां दा वार किता जा रहा है। कोई मारिया जा चुका है और कोई जख्मी है घायल है। इस जंग दे विच अगे की होर माहौल बनता है कवि जी जो इतिहास का जिक्र कर रहे हैं बड़े प्यार सत्कार नाल

सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊचे ते ऊच सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सवैये महल्ले पंजवें के इक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरंग सोई पुरख अचल बिनासी, जिस सिमरत दुर्मत मलनासी। सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जन गुण सहज विचारंग, गुर रामदास कर कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो। भगत जोग को जैतवार, हर जनक उपायो, शब्द गुरु प्रकाश्यो, हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पायो। गुर अर्जन कर गुर रामदास, भगत उत्तर आयो। बडभागी उन मान्यो, रिद शब्द बसायो, मन मानक संतोखियो, गुर नाम दृढ़ायो। अगम अगोचर पार ब्रह्म, सतगुर दर्शायो। गुर अर्जन कर गुर रामदास, भगत उत्तर आयो। जनक राज बरताया, सत जुग आलीना, गुर शब्दे मन मान्या, अब तीज पदीना। गुर नानक

लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर पर चायो गुर पर चै परवान राज मह जोग कमायो धन धन गुर धन अपर सर सुपर परायो गुर गम प्रमान अजर जरियो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उच्चरे तै सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द हो मैं निवारियो पंचा हर ने दल्यो सुन सहज निज कर सहारियो हर नाम लाग जग उदरियो सतगुर हृदय बसायो गुर अर्जुन कल उच्चरे तै जन कह कलश दिपायो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द वसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सत

सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो और आद पुरख पर तख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो काल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बितरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बासुरैन बास जाको हित नाम स्यों।

0: प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाहीं ओरे काम स्यों। मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यों।
1: अंत न पावत देव स्वै मुन इंद्र महाशिव जो करी फुन बेद ब्रंच बिचारे हो हर जाप न छाड़ो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट न्याल करी। रामदास गुरु जगतारण को गुरजोत

0: मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पदथ ते मत चूके रे मन, भेद विभेद न जान पियो। प्रताक्ष हृदय गुर अर्जन के, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग लीलार उदे, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुंदर में बूडत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत्विचार यह

फिर संकट जोन गर्व न आयो, कल समुंदर भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, वसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण, निर्मल भेख अपार तासविन अवर न कोई, मन बाच जिन जानेओ भयो त समसर सोई, तरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पर पन मथ राख

बोलू चरखा चक्की चक थल रोले बहुत अनंत लाटू माधानिया अनगाह पंखे पौंदे लैना सह सुगै चढ़ पवाइया जन नान पौंदिया गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पया कृत न जाए सब कोई नच नच हसै चले सिर उठना जाए सिद्ध न होए।